0: जग अंदर शीतल खटिया की किसे जग अंदर करके गुरा दे नाल कम सान भाई करके गुरा दे नाल कम सान भाई हाँ
1: शीतला।

0: दोहरा सिंह सो थोड़े थे लंगे रह थोड़े डिरमाए किच नट किच गैल गए चंगे जोग नाए।
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गनीमुल सकस्त गरीबुल प्रस्त राजान राज पान आन पान देव आन देव उपमा महान शाही शहनशाह भगत वत्सल करुणा निदान शतर चवर तखत दे मालक गुरता गद्दी ते विराजमान शांति दे पुंज धरती नूं तीर्थ देण वाले शब्द स्वरूप जुगो जुग अटल सतगुरु प्यार नाल आखो धन धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र निघी प्यारी अगमी गोद अंदर मनुखा जिंदगी का कुछ समा कुछ पल घड़िया सतगुरां दे प्यार विच शरदा दे विच गोद विच सज के सफले करन दा सुभाग सानू कलजुगी जीवां नू मेरे सतगुरु जी ने बख्शिश कीता है। सतसंगत साध पाई वडभागी मन चल तो भयो अरूड़ा। पंचम पातशाह कहिंदे संगत दा एक खास गुण है बड़ा गुण है जदों संगत विच जुड़ जाइए ते मन टिकना शुरू हो जांदा है मन फुरनिया विकारां तो रहत होना शुरू हो जांदा है टिक जांदा है ये मन सतसंगत करके। सो गुरु प्यारियो ढाडी कला दे राही इतिहासक पक्ष तों काव्यक वारां दे रूप दे विच आप जी ने इतिहास नू सरवण कीता। समा होया इस स्थान दा रोजाना दा जिहड़ा नितनेम है इतिहास दी कथा ग्रंथ दा नाम श्री गुरु पंथ प्रकाश प्रचलित नाम है प्राचीन पंथ प्रकाश। इहदे लिखारी ने सरदार रतन सिंह भंगू रिश्ते मुताबक बाबा महताब सिंह दे पोतरे ने। सो उन्हां दी लिखत हर रोज ही इस समय कथा विचार दे रूप विच आपां सांझी करदे आं। गुरु प्यारियो इस तों पहलां हुणे ही बेनती कीती गई है भी कल इस स्थान ते अमृत वेले अमृत संचार हो रहा है, मैं उहदे संबंध विच संगतां नूं गुजारिश करां भी भाई जिन्हां ने अजे अमृत पान नहीं कीता जिन्हां भी छेती हो सके अमृतधारी होईए। दो तरह का अमृत है, एक अमृत वह है जिहदियां अनेकां वनगियां ने किस्मां ने जिहड़ा शरीर वास्ते अमृत है। इस अमृत नूं मेरे पातशाह ने छत्ती अमृत भी कह दिता भी छत्ती प्रकार का भाव अनेकां तरह का सुआदला अमृत। इस अमृत दे विच गिणती आउंदी है साडे भोजन जिन्ने भी हन भोजन इस करके अमृत है भोजन छकांगे शरीर जिंदा रहेगा मौत तो बचे रहांगे इस करके भोजन अमृत है। जिन्नियां भी दुनिया के अंदर मेडिसन वैक्सीन जां किसी तरह दियां भी दवाइयां इजाद कीतियां गईयां ने किसी भी पैथी विच ये भी साढ़े शरीर वास्ते अमृत ने। शरीर नूं बचाउण विच जिंदा रखण विच इन्हां दा सहयोग है। इस तों वध के पाणी जिहड़ा ये भी साढ़े लई अमृत है। मेरे सतगुरां ने पाणी नूं गुरबाणी विच कई थावां ते अमृत किया। ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਹੈ ਹਵਾ। ਹਵਾ ਕਿਤੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਮ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ, ਆਤਮਕ ਖੇਡ ਦੀ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ, ਭਗਤੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਰੂਹ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਹੈ। ਬਚਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ,

0: सतराम श्री वाहिगुरु जी हम अवगुण परे गुण नाही अमृत छाड़ो बिकै बिख खाई माया मोह परम पै भूले सुत दारा सियों प्रीत लगाई एक उत्तम पद सुनियो गुरु संगता तै मिलंद जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीर्त की गुरु रामदास रखो सरनाई सो कोटल गुरु सेवी एनस सहज सुभाय दर्शना प्रसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए दर्शन प्रसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए ताना वाहिगुरु जी तनासरी महला तीजा कार दूजा चब दे इको का सतगुर प्रसाद इहो तान्या खोट ना निखुटे ना जाए इहो तान्या खोट ना निखुटे ना जाए पूरे सतगुर दिया दिखाए अपने सतगुर को सद बल जाई गुर कृपा ते हर मन वसाई से धनवंता हर नाम लिवलाए गुरपुर हदन प्रकाशिया हर कृपा ते वसै मनिया रहाओ अवगुण काट कुन हृदय समाय पूरे गुर कै सहज सुभाय पूरे गुर की साची बाणी सुख मन अंतर सहज समानी एक अचज जाना देखो पाई दूधा मारा हर मन वसाई नाम मोलका ना पाया जाए कुर्ब सादा वसै मन आए सब मह वसै प्रभ एको सो ਗੁਰਮਤਿ ਘੱਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਹਿਜੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਟ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ।

कथ कथ कथि कोटि कोट कोट दे दा दे लै दे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विगसै वे प्रवाहो साचा साहिब साच नाए भाख्या भाओ अपार अख मंगह देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखियै जित दिसै दरबार मोह के बोलन बोलिए जित सुन तरे।

अहंकार, असंख्य मूर्ख अंधकोर, असंख्य चोर हराम खोर, असंख्य अमर कर जाहे जोर, असंख्य गलवड हत्या कमाहे, असंख्य पापी पाप कर जाहे, असंख्य कूड़े आर कूड़े फिराहे, असंख्य मलेच्छ मल भख खाहे, असंख्य निंदक सिर करह पार, नानक नीच कह विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कह सिर भार हुए, अखरी नाम अखरी सालाह, अखरी ज्ञान गीत गुणगाह, अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोग वखाण, जिन ए लिखे तैस सिर नाहें, जिव फुरमाए तिव तिव पाहे, जेता कीता तेता नाओ, विण नावै नाही को थाओ, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, भरिए हथ पैर तन देह, पानी धोतै उतर सुखेह, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लईऐ ओ धोए, भरिए मत पापा कै संग, ओ धोपै नावै कै रंग, पुन्नी पापी आखण नाहें, कर कर करना लिख लै जाहो, आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी आवहो जाहो, तीर्थ ताप दया दत दान, जे को पावै तिलका मान, सुनिया मन्या मन कीता पाओ, अंतरगत तीर्थ मल नाओ, सब गुण तेरे मैं नाही कोए, विण गुण कीते भगत न होए, स्वस्ताथ बाणी बरमाओ, सत सुहाण सदा मन चाओ, कवन सुवेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार, कवन से रुति माह हो कवन, जित होआ आकार, वेल ना पाइया पंडती, जे होवा लेख पुराण, वक्त ना पायो कादिया, जे लिखन लेख कुरान, थित वार ना जोगी जाने, रुत माह हो ना कोई, जा करता सिरठी को साजे, आपे जाने सोई, किव कर आखा किव साला ही, क्यों वरनी किव जाना, नानक आखण सब को आखै, एक दू एक सियाना, वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जा कहोवै, नानक जे को आपो जाने, अगै गया ना सोहै, पाताला पाताल लख, आगासा आगास, ओड़क ओड़क भाल थके, वेद कहन एक वात, सहस अठारह कहन कतेबा, असुलु एक तात, लेखा होए ता लिखी है, लेखा होए विनाश, नानक वड्डा आखी है, आपे जाने आप, सालाही सालाहे, एती सुरत ना पाईया, नदिया अतै वाह, पवह सुमुंद ना जानी है, सुमुंद शाह सुल्तान, गिरहा से ती माल तान, कीड़ी तोल न होवनी, जे तिस मनहो न विसरह, अंत न सिफती कहन न अंत, अंत न कर

जाहे एहो अंत ना जाने कोए बहुता कहिए बहुता होए वड्डा साहिब ऊंचा थाओ ऊंचे उपर ऊंचा नाओ एवड़ी ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को जाने सोए जेवड़े आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता।

जुग जुगे कुवेस, आसन लोए लोए भंडार, जो किश पाया सो एका वार, कर कर वेखै सिरजन हार, नानक सच्चे की साची कार, आदेश तिसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुगे कुवेस, एक दूजी भौ लख होहे, लख होवह लख वीस, लख लख गेड़ा आखी है, एक नाम जगदीश, ए तराह पत पवड़िया, चढ़िए होए इकीस, सुन गल्ला आकाश की, कीटा आई रीस, नानक नदरी पाई है, कूड़ी कूड़ा ठीस, आखन जोर चुपै नह जोर, जोर ना जीवन मंगन देन ना जोर, जोर ना जीवन मरण नह जोर, जोर ना राज माल मन सोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुट्टै संसार, जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती थिति वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच प्रवान, नदरी कर्म पवै निसान, कच पकाई उथै पाए, नानक गया जापै जाए, धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म, केते पवन पाणी वै संतर, केते कान महेश, केते बरमे घाटत घड़िय, रूप रंग के वेस, केतिया कर्म भूमि मेर केते, केते तू उपदेश, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, केते देवी वेस, केते देव दानव मुन केते, केते रतन सुमंद, केतिया खाणी केतिया बाणी, केते पात नरेंद, केतिया सुरती सेवक केते, नानक अंत ना अंत, ज्ञान खंड मैं ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड़ आनंद, सर्म खंड की बाणी रूप, तिथै घाटत घड़िया बहुत अनूप, ताकिया गल्ला कथिया न जाहे, जे को कह पिछै पछुताए, तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़िया सुरा सिद्धा की सुध, कर्म

रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रचियो स्वयं भव गड़न भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख आदेश धर्म धाम सो भरम रहत अभूत अलख अपेस अंग राग न रंग जाक जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अनुस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन अभंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रत पार सर्वगंता सर्वहंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र ना जानही जे रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जा कह नेत भाखत नित कोट सिमरत पुराण शास्त्र न आवही वह चित मद पार छंद त्व प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश अन निस्दिन अनास आजान बाहु साहान शाहु राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनुभूत अंग आबा अपंग गतमित अपार गुण गण उदार मुन गण प्रणाम निरपय निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड अलिस्या कर्म अदृश्या धर्म सर्वा प्रणाड्या अंडंड बाड्या चाचरी छंद त्वा प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे भुजंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मान्या है चतर चक्र दान्या चाचरी शांत न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रथिस अदिस अदृश अकृस भगवती छंद त्व प्रसाद कथते के आ छिज देसै के आ भिज पेसै के आ गंज करमै के आ भंज भरमै के आ भिज लोकै के आदित सोकै के अवधूत भरने के विभूत करने के राजन प्रभा है के धर्मंग तुजा है के आ शोक भरने के सर्व भरने के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुपो अनुपै के आद अदेव हैं के आप अपेव हैं के चित्रंग विहीन है के एक अधीन है के रोजी रजाक रहीम है रिहाक है के पाक बेऐब हैं के गैबुल गैब हैं के अफबुल गुनाह हैं के साहान शाह हैं के कारण कुनंद हैं के रोजी देहंद हैं के राज करहीम हैं के कर्मंग करीम हैं के सर्वंग कली हैं के सर्वंग दली हैं के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य के सर्वत्र गौने के सर्वत्र पौने के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र साज के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज के सर्वत्र राज के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैवंग प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्या है के सर्वत्र थाप्या के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कलीम है के परमंग फहीम है के अकल अलाम है के साहिब कलाम है के हुसनल वजू है तमाम उल रजू है हमेशल सलाम है सलीखत मुदाम है गनीम उल शिकस्त है गरीब उल परस्त है बुलंद उल मकान है जमीन उल जमान है तमीज उल तमाम है रजू उल निदान है हरीफ उल अजीम है रजायक यकीन है अनेकुल तरंग हैं भेद हैं भंग हैं अजीज उल निवाज हैं गनीम उल खिराज हैं निरुक्त स्वरूप हैं त्रमुक्त बपूत हैं प्रपुक्त प्रभा हैं सुयुक्त सुधा हैं
सदैवं स्वरूप हैं, भेदी अनूप हैं, समस्तो पराज हैं, सदा सर्व साज हैं, समस्तुल सलाम हैं, सदैव अल काम हैं, निर्बाध स्वरूप हैं, अगाध हैं, अनूप हैं, ओंगाद रूपे अनाद स्वरूप है, अनंगी अनामे त्रभंगी त्रकामे त्रवर्गंग त्रबाधे अगंजे अगाधे, सुपंग सर्व भागे सुसर्वा अनुरागे, त्रिभुक्त स्वरूप हैं, शज हैं, शूत हैं, क्यों नरकंग प्रणास हैं, पृथ्वी प्रवास हैं, निरुक्त प्रभा हैं, सदैवं सदा हैं, विपुक्त स्वरूप हैं, प्रयुक्त अनूप हैं, निरुक्त सदा हैं, विपुक्त प्रभा हैं, अनुक्त स्वरूप हैं, प्रयुक्त अनूप हैं, चाचरी छंद भंग हैं, नंग हैं, भेख हैं, लेख हैं, अपर्म हैं, अकर्म हैं, अनाद हैं, जुगाद हैं, अजय हैं, भय हैं, भूत हैं, अतूत हैं, अनास हैं, उदास हैं, तंद हैं, बंध हैं, अपगत हैं, विरक्त हैं, अनास हैं, प्रकाश हैं, निचिंत हैं, सुनिंत हैं, अलेख हैं, अदेख हैं, अलेख हैं, अपेख हैं, अटा हैं, अगाह हैं, असंभ हैं, अगम्भ हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अनित हैं, सुनित हैं, अजात हैं, अजाद हैं, चरपट छंद त्व प्रसाद, सर्वं हंता सर्वं गंता, सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता, सर्वं कहर्ता सर्वं कर्ता, सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं, सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं, सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता, रसावल छंद त्व प्रसाद, नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे, अनंगं स्वरूपे अपंगं विपूते, परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे, अगाध स्वरूपे निर्बाध विपूते, अनंगी अनामे त्रपंगी त्रकामे, निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे, न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात, निरसाकं श्री खैमितो मीख हैं, सदैवं प्रभा हैं, अजय हैं, अजा हैं, भगवती छंद त्वा प्रसाद, के जाहर जहूर हैं, के हाजर हजूर हैं, हमेशुल सलाम हैं, समस्तुल कलाम हैं, कि हुसनल के साहिब दिमाग हैं, कि हुसनल चिराग हैं, के कामल करीम हैं, कि राज करीम हैं, कि रोजी दिहंद हैं, कि राज करहिंद हैं, करीमुल कमाल हैं, कि हुसनल जमाल हैं, गनीमुल खिराज हैं, गरीबुल निवाज हैं, हरीफुल सिकन हैं, हिरासुल फकन हैं, कलंकंग प्रणास हैं, समस्तुल निवास हैं, अगंजुल गनीम हैं, रजाय करहीम हैं, समस्तुल जुबां हैं, कि साहिब किरा हैं, कि नरकंग प्रणास हैं, बहस्तुल निवास हैं, कि सर्बुल गवन हैं, हमेशुल रवन हैं, तमामुल तमीज हैं, समस्तुल अजीज हैं, परंग परम ईस हैं, समस्तुल अदीस हैं, अदेसुल अलेख हैं, हमेशुल अपेख हैं, जमीनुल जमा हैं, अमीकुल इमा हैं, करीमुल कमाल हैं, कि जुरत जमाल हैं, कि अचलंग प्रकाश हैं, कि मितो सुवास हैं, कि अजब स्वरूप हैं, कि मितो विभूत हैं, कि अजब स्वरूप हैं, कि मितो विभूत हैं, कि मितो पसा हैं, कि आत्म प्रभा हैं, कि अचलंग अनंग हैं, कि अमितो अपंग हैं, मदभार छंद त्वा प्रसाद, मुन मन प्रणाम, गुण गण मुदाम, अरबर अगंज, हर नर प्रपंज, अन गण प्रणाम, मुन मन सलाम, हर नर अखंड, भर नर अमंड, अनुभव अनास, मुन मन प्रकाश, गुण गण प्रणाम, जल थल मुदाम, अनछिज अंग, आसन अपंग, उपमा अपार, गतमित उदार, जल थल अमंड, दिस विस अपंड, जल थल महंत, दिस विस बेअंत, अनुभव अनास, त्रित तर तुरास, आज

भुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग विपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतर्मंग विपूते सदा सचिदानंद सतरंग प्रणासी करीमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब विपूते गजायब गनीमे हरियंग करियंग करीमल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयंभव सुपंग सर्वदा।

कौ मृतान को पूजन तायो, कूर क्रिया रुझियो सब ही जग, श्री भगवान को भेद ना पायो। एको ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कव्यो बाच बेनती चौपई, हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रत पारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो, आप हाथ दै मोहे बचावहो, सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख्य सबै करतारा, मोर अच्छा निज कर दै करिए, सब बैरन को आज संगरिए, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊ, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊ, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारिय है, आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय, हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तो जुजू करियो हो रच्छा, राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दस कंता, काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो,

जानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न पिव आप अपनी बुध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखा ना जाए पसारा के बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप सुरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जे रज से तज कीनी उत भुज खान बहुर रच दीनी कहू फूल राजा हुआ बैठा कहू सिमट भयो शंकर इकैठा सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख्य उबार असिख्य संगरो दुष्ट जिते उठवा तो उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुज तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुखित होए मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सबट

तिन अमृत गुर ते पाया। भगता की चाल निराली, चाला निराली भगता हकेरी, बिखम मार्ग चलना, लब लोभ अहंकार तज तृष्णा, बहुत नाही बोलना, खन्यो तिखी वालो निकी, एत मार्ग जाना, गुरप्रसादी जिनी आप तजया, हर वासना सुमानी, कह नानक चाल भगता, जुगहो जुग निराली, ज्यो तू चलाए हे तिव चलह स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे, जिव तू चलाए हे तिवै चलह, जिन्ना मार्ग पाव हे, कर कृपा जिन नाम लाए हे, से हर हर सदा त्याव हे, जिसनों कथा सुनाए हे अपनी, से गुर

संध्या बादम सिल पूजस बगल समादम मुख चोट भुखण सारं त्रिपा तिहाल विचारं गल माला तिलक ललाटम दो धोती वस्त्र पाटम जे जानस ब्रह्मं करमं सब।

मत पिटे वे मत पिटे, एहो अन्न असाडा पिटे तन पिटे, फेड़ करेन मन जुठे चिली परेन।

सो साहब दस मानिए जित किता पाइए अपना सा काल बड़ी क्यों कालिए मंदा मूल ना की चाहिए लमी नजर ने हालिए जो साहेब ना हारिए ते वेहा पसा टालिए किचला ही ऊपर कालिए किचला ही

सुनते पुनीत कहते पवित बिनवंत नानक गुर चारण लागे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।

सलूक। कर्ण कर्ण प्रभ एक है दूसर नाई कोय, नानक तिस बल हर ने जल थल महियल सोई। अष्टपति करण करावन करण जोग जो तिस पावे सोई होगा। तिन मैं थापु थापन हारा अंत नहीं किछ पारा वारा, हुक्मे तार अदर हावे हुक्मे उपजा हुक्म समावे, हुक्मे ऊच नीच बुहार हुक्मे अणक रंग प्रकार, कर कर दिखै अपनी वड्याई नानक सामै रिया समाई। प्रापा वै मनोगत पावे प्रापा वै ता पाथर त्रावै, प्रापा विणसा तेरा खै प्रापा वै ता हर गुण पाखै, प्रापा वै ता पत तुदार आप करै अपनी विचार है। दुआ सिरिया का आप स्वामी खेलै विकसै अंतर जामी, जो पावै सुकार करावै नानक दृष्टि अवरण आवै, कौ मानुख ते क्या होया वै जो तिस पावै सोई करावै। इसका हाथ हुई ता सब कुछ ले जो तिस पावै सोई करे, अण जानत बिख्या मैं रचै जे जानत अपने आप बचै। भरमे पूला दै दिसतावै निम कुआए चार कुंट फिर आवै, कर कृपा जस अपनी भगत दे नानक दे जन्ना मले। खिन मैं नीच कीट को राज पार ब्रह्म गौरी बिनवाज, जा का दिष्ट कशु ना आवै ते तत्काल दैद प्रटावै। जा को अपनी करै बखसीस ता का लेखना गणै जगदीश, जियो पिणसा तिसकी रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश। अपनी मन ते आप बनाई नानक जी वै देख बढ़ाई, इसका बल नाई इस हाथ करन कराउन सर को नाथ। आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस पावै सोई फन थियो। कबू ऊच नीच मैं बसै कबू सुख हर करंग हसै, कबू निंद चिंद बुहार कबू ऊब कास प्याल, कबू बीता ब्रह्म बीचार नानक मलावनहार। कबू नृत करै बपात कबू सुई रह दिन रात, कबू महाक्रोध बकराल कबू सर्व की उतरवा।

नानक गर्भ गले अष्टपति जिसके अंतर राज मान सो नरक पाती उत समान जो जाना मैं जो बिनवंत सोत बेटा का जानते आप सुख कर्मंत कहावे जन्म मरे बजोन परमावे धन भूमका जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावे नानक इया मुक्त आगे सुख पावे तनवंता हुई कारगर बावे तिन समान का संग न जावे बहु लस्कर मानुख ऊपर करै आस भल पीतरता का हुई बिना सब ते आप जाने बलवंत खिन मैं हो जाए पसमंत किसने बदा पंकारी तरमनाय तस्करा खुआरी गुर प्रसाद जा कर मिटे मान सो जा नानक दरगह प्रमाण कूट कर्म करै हां धारी सर्म पावे सगले बिरथारी अणक तपस्या करे अंकार नरक सुर फिर अवतार अणक जतन कर आत्म नहीं दरवे हर दरगे को कैसे गवे आप सो जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे सर्व की ऋण जाका मन हुई कौ नानक ताके निर्मल सोई जब लग जाने मुझ ते कछ हुए तब इसको सुख नाही कोई जब जाने मैं कछ करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारा को बैरी मीत तब लगने चलनाई चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग तरुण राय देश जाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हों छूटे सहस कटै लाको उठता वह तृप्त न आवे माया पाचे पावे अनक भोग बिख्या के करे ना ते बतावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राजा सुबन मनोर बिरते सब काज नाम रंग सर्व सुख हुई बड़भागी किसै प्राप्त हुई करन करावण आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करावण करने हार इसके हाथ खां बीचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आपा प्रभ सोए जो कुछ गिनो सो अपने रंग सब ते दूर शब हूं कह संग बुझे देख करे बी क्या पै क्या पै अनिक मरण में सया बह न जाय नानक सादी रह समाय आप दिस समझे आप आपे रचे सब कै साथ आप गिनो अपन विस्थार सब कुछ उसका हो करने हार उसते भिन्न कहो कुछ होए थान तनंतरी कै सोई अपने चलित आप करने हार कौत करे रंग उपार मन मैं मन अपने माए नानक कीमत कहन न जाय सत सत सत प्रभु स्वामी गुर प्रसाद किने वख्यानी सच सच सच सब कीना कोट मदे किन बिरला चीना भला भला भला तेरा रूप असुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी सरबण बखाणी पवित्र पवित्र पवित्र पनीत नाम जपै नानक मन प्रीत सलूका संत सरण जो जान परै सूजन उदरन हार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपति संत का दुखन हार जा कटै संत का दुखन जमते नहीं छुटै संत का दुखन सुख सब जाय संत का दुखन नरक में पाय संत का दुखन मत हुए मलीन संत का दुखन सो बाते हीन संत के अति को रखे न कोई संत का दुखन थान प्रष्ट हुई संत कृपाल कृपा जी करै नानक संत संग निंदक पीतर है संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग जो लवै संतन कै दुखन सर्प जोन पाय संत कै दुखन त्रिक जोन किरमाय संतन कै दुखन तृष्णा मैं जलै संत का दुखन सब कुछ चलै संत का दुखन ते सब जाय संत का दुखन नीच नचाय संत दुखी कौ थाओ को नाहे नानक संत पावे तो पीगत पाहे संत का निंदक महातताई संत का निंदक टिक न पाई संत का निंदक महात्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राजतेहीन संत का निंदक दुखिया अरदीन संत का निंदको सर्वरूप संत का निंदको सदा वियोग संत की निंदा दुख में दुख नानक संत पावैता उसका पियो मुख संत का दुखी सदा पवित संत का दुखी किसे का नहीं मित संत के दुखे दुखी को न लागे संत के दुखी को सब त्याग संत का दुखी महा अहंकारी संत का दुखी सदा बिकारी संत का दुखी जन्मै मरे संत की दुखना सुखते टरै संत के दुखी को नाई ठाओ नानक संत पावै तले मलाय संत का दुखी अद बीत टूटै संत का दुखी किते काज न पहुंचै संत के दुखी को ध्यान प्रमाइय संत का दुखी जुड़ पाइय संत का दुखी अंतर ते थूथा
ਜੋ ਸਾਸ ਮਿਨਾ ਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਲੂਤਾ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੀ ਜੜ ਕੇ ਛਨਾਈ ਆਪਣ ਬੀਜ ਆਪ ਹੀ ਖਾਏ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕਬਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਪਾਵੇ ਤਲੇ ਉਬਾਰ ਸੰਤ ਗਦੁਖੀਓਂ ਬਿਰਲਾਏ ਜੋ ਜੜ ਵੀ ਹੂਣ ਮਛਲੀ ਤੜਫੜਾਈ ਸੰਤ ਗਦੁਖੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ ਜੋ ਪਾਵਕ ਈਦਨ ਨਹੀਂ ਤਰਾਪੈ ਸੰਤ ਗਦੁਖੀ ਛੁੱਟੀ ਅਕੇਲਾ ਜਿਉ ਬਹਾੜ ਤਿਲਕੀਤ ਮਾਹੀ ਦੁਹੀਲਾ ਸੰਤ ਗਦੁਖੀ ਧਰਮ ਤੇ ਰਹਿਤ ਸੰਤ ਗਦੁਖੀ ਸਦ ਮਿਥਿਆ ਕੈਤ ਕਿਰਤ ਨਿੰਦਕਾ ਧੁਰੀ ਪਿਆ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥਿਆ ਸੰਤ ਗਦੁਖੀ ਵਿਗੜੂਪ ਹੋਈ ਜਾਏ ਸੰਤ ਗਦੁਖੀ ਕੋ ਦਰਗਾਹ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ ਸੰਤ ਗਦੁਖੀ ਸਦਾ ਸਿਕਾਈਐ ਸੰਤ ਗਦੁਖੀ ਨਾ ਮਰੇ ਨਾ ਜੀਵਾਈਐ ਸੰਤ ਗਦੁਖੀ ਕੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਆਸਾ ਸੰਤ ਗਦੁਖੀ ਉੱਠ ਚਲੈ ਨਿਰਾਸਾ ਸੰਤ ਗਦੁਖ ਨ ਤਿਟੈ ਕੋਈ ਜੈਸਾ ਭਾਵੈ ਤੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਈ ਪਿਆ।

अनुसार राष्ट्रपति संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम उधार अवर उपाव समीत बिसारु चरण कमरद में उरथारु करण कान सुप्रभ समरथ दृढ़ कर गहो नाम हरवत ए तन संचो होवो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जे तन को चार कुंट उठता वै सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुख नित बाछ मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस सोबा को करे भली करनी सा सोबा पज हर की सरनी अनको पावी रोग न जाय रोग मिटा हर अवख दलाय सर्व निदान में हर नाम निधान जप नानक दरगह परवान मन प्रभु दो हर कै नाय दै दिस धाव त्या बैठाय ताको बिघन न लागे कोई जा कर दै बसे हर सोय कल ताती ठाडा हर नाउ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पाओ बिन से पूर्ण हुए आस भगत पाए आत्म प्रगास तित कर जाए बसै अबनासी कौ नानक काटी जा फासी तत विचार कहे जन साचा जन्म मरै सो काचू काचा आवागमन मिटे प्रासी आप त्याग शरण गुरुदेव और रतन जन्म का हुई उधार हर हर सिमर प्राण आधार अनक पावना छूटन हारी सिमर सा तरबीद विचारी हर की भगत करो मन लाए मन बचत नानक पल पाए संग न चास तेरे तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सोत मीत कुटांब अर बिनता इनते कहो तुम कौन सनाता राज रंग माया विस्तार इनते कहो कमन छुटकार अस अस्ति राथे शिवारी झूठा डब झूठ पासारी जिन दिए तिस बुझेना बगाना नाम बसार नानक पुछ ताना गुर की मातू ले आने भगत बिना बौडू बे स्याणे हर की भगत करहु मन मीत निर्मल हुए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल विख जाहे आप जप अवरा नाम जिपाभु सुनत कैत रैत गत पाभु सार पूत सदर को नाओ सहस बाय नान गुण गाव त्रियुत्र समैल बिन जय हूं मैं बिख पैल हुह अचिंत बसै सुखनाल सास ग्रास हर नाम समाल छाड़ सयानव सगली मना साध संग पावै सच तना हर पूंजी सच करहु बिहार इया सुख दरगह जयकार सर्व निरंतर एको दे कौ नानक जा कै मस्तक लेख एको जा पीकू सला एक सिमरी को मनयाह एक श्री गुण गाव अनंत मंतन जा पीक भगवंत एको एक एक हरिया पूर्ण पूर्यु प्राव्याप अणक विस्तार एक ते पय एक राध प्राचित गई मंतन अंतरिक प्रवराता गुर प्रसाद नानक एक जाता।

कमल सो लागै प्रीत भगत करूं प्रभु की नित नीत। एको टेको आधार नानक मांगै नाम प्रसार प्रभु की दृष्ट महा सुख होए हर सुभावै बिरला कोई। जिन चाख्या से जन तिपताने पूर्ण पुरख नहिं डालाने। सुबर परे प्रेम रस रंग उपजै चाउ साध कै संग परै सरन आन सब त्याग अंतर पर गास अंदन लिवलाग। उड़भागी जपया प्रभु सुई नानक नाम रते सुखोई। सेवक की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत लई। जन को प्रभु हो दयाल सेवक की नो सदा न्याल। बंधन काट मुक्त जन पिया जन्म मरण दुख भ्रम गया। इष्ट पुन्नी शरदा सा पूरी राव रिया सा संग हजूरी। जिसका साथ लिया मलाए नानक भगती नाम समाए। सो को विसरै जे काल न पानै सो को विसरै जे किया जानै। सो को विसरै जिन सब कुछ दिया सो को विसरै जे जीवन जिया। सो को विसरै जे अगन में राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै। सो को विसरै जे व्यक्ति काढ़ै जन्म जन्म का टूटा गाढ़ै। गुरपुरे तत एह बजाया प्रभ अपना नानक जन ध्याया। साजन संत करोए कामयान त्याग जपू हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरै नाम जपावो। भगत पै तरियै संसार बिन भक्ति तन हो सीशार। सर्व कल्याण सुख निध नाम बूढ़त जात पाए विश्राम। सगल दुख का होत नास नानक नाम जपो गुणतास। उपजी प्रीत प्रेम राज चाओ मन तन अंतर एह सुआओ। नेत्रो पीक दर सुखोए मन विकसा सा चरण धोई। भगत जना कै मन तरंग बिरला को पावै संग। एक बदी जय कर मिया गुर प्रसाद नाम जप लिया। ताकि उपमा कहीं न जाए नानक रिया सर्ब समाए। प्रभ बख्शंद दीन दयाल भगत वचल सदा कृपाल। अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत पित पाल। आदि पुरख कारण करतार भगत जिन्हां के प्राण आधार। जो जो जपै सो होए पनीत भगत पाए लावै मन हीत। हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान। सर्ब बकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमकार के गुण गाए। अनक राज भोग वड़ियाई हर की ना हर के नाम की कथा मन पाई। बहु पूजन का पुर संगीत रसना जप दी हर हर नीत। भली सु करनी शोभा तनवंत हृदय बसै पूर्ण गुरमंत। साध संग प्रभु दियो निवास सर्व सु

अष्टपदी आप कत्या सुन हार पै कै विस्तार जिस भारस टू पाए अपने भाणे लै समाए तू ते भेने कछुए अपन सूसा जगत पुरोई जाकू प्रभ जीव आप बजाए सच नाम सूही जन पाए सो समदर्शी तात का बीता नानक सत सेठ का जीता जी जंत सता कै हाथ दीन दयाल नाथ को नाथ जिस राखै तिस कोई ना मार है सो मुआ जिस मनु बिसार है ते तजे अवर का कु जाए सब सरीक निरंजन राय जी की जुग जा कै सव्यात अंतर बार जानु साथ गुण दान बेअंती उपार नानक दास सदा बलिहार पूर्ण पूर हे दयाल सब उपर होवित किरपाल अपने करतब जाने आप अंतर जा मीरु ब्याप प्रतपालै जीण बहुपात जो जो रचो सत सह त्यात जिस भावै तिस लय मिलाए भगत करै हर के गुण गाय मन अंतर विश्वास कर मान्य करन हार नानक इक जान्या जन लागा हर एक नाय तिसकी आस न बिरथि जाय सेव को सेवा बण आई हुकुम बूझ परम पद पाई एते उपर नहीं विचार जाके मन बसया नंकार बंधन तूर पै निर्वैर आंदन पूजै गुर के पैर ए लोक सुखिए पर लोक सहेले नानक हर प्रभ आपे मेले सात संग मिल करु आनंद गुण गावो प्रभ परमानंद राम नाम तत करु विचार दुर्लभ दे का करु उधार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण रतन कह एह सुहाओ आठ पैर प्रभ पे खूनीरा मिटे अज्ञान मिनसे अंधेरा सुन उपदेश सिरदै बिसाव मन इच्छे नानक फल पावो हालत पल द्यो लियो सवार राम नाम अंतर उरदार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसै ते साच परिखिया मन तन नाम जपहो लिबलाए दुख दर्द मन ते पौ जाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगै निभै खेप तुमारी एक टेक रखो मन माहे नानक बार न आवै जाए ते ते दूर कां को जाए उबरे राखण हार ते आए नरपौ जपै सगल पौ मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाए मिटे अंकार ते जन को कोई न पहुंचन हार सिर उपर ठाडा गुरसूरा नानक ताके कारज पूरा मत पूरी अमृत जाके दर्शन पीक दो दरसैठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर आरूप धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रदान जिस मन बसै सुने ला जिस मन बसै

पूरे गुर का सौन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पीक साध साध सिमरु गोबिंद मन अंतर की उतरै चिंद आस नित त्यागो तरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अगन सागर तरह हर तन के पर लियो पडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग पज परमानंद नरक नुवार अधारू जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चिच तू नारायण एक एक रूप जा कै रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी कह है दार उत्तम सलोक साध के बचन मलीक लाल ही है रतन सुनत कुमावत हो त्योदार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता कै संग जा कै मन लागा रंग जय जय शब्द अनाहद वाजै सुन सुन अनंत करै प्रभु गाजै परटे गोपाल महात के माथे नानक उदरे तिनके साथे सरन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पे सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पे गुरुदेव पूर्ण होई सेवक की सेव आज जाल विकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तारी नानक निभी खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधानी का गरचीत सुखमणी सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसै सहूत निदान सर्ब इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोई सब ते ऊच पाए उस स्थान बौर न होवै आवण जान हर दिन खाड़ चले जन सोए नानक जिसै प्राप्त हुए खेम सांत रिध नव निध बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ त्यान ज्ञान श्रेटू तुम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतर तत काबीता साम दस एक दटीता ए फल तिस जन के मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन।

तेरी रास तुम मात पिता हम तुमरी कृपा मैं सुख कोई ना जानी तुमरा उचे ते उचा सगल समग्री तुमरा सूतर तुमते हो ए सो आग्या तुमरी गात मेत तुम ही नानक दास सदा बोलना जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु एको ओंकार वाहिगुरु जी की फतह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आई फिर अंगत गुर ते अमरदास रामदासी होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नू समराउ श्री हर आई श्री हर कृष्ण ते आईया जिस डिठा सब दुख जाई तेग बहादुर सिमरै घर नौन दे आवै ताई सब थाई होई सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलो जी वाहे गुरु। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडिठ कीता तन्हां प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हे सिहि दित्ते बंद बंद कटाई खोपरियां लुहाइयां चरकड़ियां ते चढ़ियारियां नाल चिराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुबासां संग निभाही तनहां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान तरके बोलो जी वाहे गुरु। प्रथमी सरबत खालसा जी की अरदास है सरबत खालसा जी का वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवै चितावन का सदका सरब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रछिया रियायत देख तेग फतेह बिरद की पैच पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान प्रोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जोगा अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु। सिखा दा मन नीमा मत उच्ची मत पत दा राखा वाहेगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वारे गुरधामा जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है तन्हां दे खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे मां नितानियां दे तां नियोटियां दी ओट धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी आप जी दे हजूर अरदास बेनती है लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे सेवक परिवार वल अपनी बेटी अनूप कौर धालीवाल दे जन्म दिन की खुशी नूं मुख रखदिआं होइआं तिन्हां दे पिता तलवीर सिंह धालीवाल ते माता हरजिंदर कौर धालीवाल तिन्हां दे दादा सरदार स्वर्ग वासी चमकौर सिंह धालीवाल ते दादी हरजिंदर कौर धालीवाल सारे ही परिवार वल्लों श्री सुखमणी साहिब बाणी दे पाठ होए अमृत बाणी दा कीर्तन होया गुरबाणी दे पाठ करदिआं कीर्तन करदिआं सेवा करदिआं बेअंत फुल्लां बख्श देना जी। बेटी अनूप कौर दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना माता पिता दा आग्याकारी बनाउणा विद्या विचारी परउपकारी विद्या दी दात नाम दी दात गुरसिखी जीवन बख्शना अंग संग हो के सहायता करनी दुखां दलिद्रां दे नाश करने सुखां दे प्रवेश करने जी सेवकां दीआं सेवावां पिटावां दर प्रवान करनियां
ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਪਛਾਕੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰ ਲੋਕ ਪੜਦੇ ਟੱਕਣੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਛੇ ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਸੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਥ ਕਰੋ। ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੇ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬਹੁ ਚਾਹ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾ ਜਹਾ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ, ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੈ ਹੱਥ ਮੈਂ, ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਚਿਆ ਕਰਹੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

साहिब समरथ अपना पंथ सुहेला आगे होए पंथ सुहेला जावहो ता फल पावहो आगे मिले वडाई भेट स्यों जावहो सच समावहो ता पत लेखै पाई महली जाए पावहो खसमै पावहो रंग स्यों रलिया माणे मरण ना मंदा लोका आखी जे कोई मर जाने मरण मुनसा सूर्या हक है जो होए मरण परवाणो सूरे से ही आगे आखी है दरगह पाव है साची माणो दरगह मान पाव है पत स्यो जाव है आगे दुख न लागे कर एक त्याव है ता फल पाव है जित सेवे है भौ भागे ऊंचा नहीं कहना मन में रहना आपे जाने जानो मरण मुनसा सूर्या हक है जो होए मर है परवाणो नानक किस्मो बाबा रोई है बाजी है एहो संसारो कीता वेख है साहिब अपना कुदरत करे विचारो कुदरत विचारे धारण धारे जिनकी आसो जाने आपे वेख है आपे बूझे आपे हुक्म पछाणे जिन किछ किया सोई जाने ताका रूप पारो नानक किसनो बाबा रोई है बाजी है एहो संसारो वड़हंस महला पहला दखनी सच सिरंदा सच्चा जानी है सचड़ा पर्वत गारो जिन आपी ने आप साजिया सचड़ा अलख पारो दोए पुड़ जोड़ विछोड़ेन गुरबिन घोर अंधारो सूरज चंद सिरजेन एहनिस चलत विचारो सचड़ा साहिब सच तू सचड़ा देह प्यारो रहाओ तुद सिरजी मेदनी दुख सुख देवन।

कह नानक ते भजमना पौ निध उतरै पार। सुख दुख जेह परसै नहीं लोभ मोह अभिमान। कह नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान। उस्तत निंदया नाहें जेहे कंचन लो समान। कह नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान। हरख सोग जा कै नहीं बैरी मीत समान। कह नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान। पै काहू को देत नह नह पै मान त्यान। कह नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। जेह बिखिया सगली तजी लियो भेख बैराग। कह नानक सुन रे

निस दिन जो नानक भजे सफल होहे ते काम। जे बागुन गोबिंद भजो करन सुनो हर नाम। कौ नानक सुन रे मन।

उपजै बिन सह नीत, जग रचना तैसे रची को नानक सुन मीत। प्राणी कछु ना चेतई मद माया के अंद, को नानक बिन हार भजन परत ताहे जम फंद। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की लेह, को नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख देह। माया कारण ताव ही मूर्ख लोग अजान, को नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान। जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम ते जान, हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान। मन माया में फद रहयो बिसरयो गोबिंद नाम, को नानक बिन हार भजन जीवन कौने काम। प्राणी राम न चेतई मद माया के अंद, को नानक हर भजन बिन परत ताहे जम फंद। सुख में बहु संगी पए दुख में संग न कोए, को नानक हर भजमना अंत सहाई होए। जन्म जन्म

नानक कहयो बखान, गर्व करत है देह को बिनसै छिन में मीत। जेह प्राणी हर जस कहयो नानक तेह जग जीत। जेह घट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान, तेह नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। एक भगत भगवान।

सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सब सधारो, जे को खावे जे को पुंचे, जिसका होए उधारो, एह वस्त तजी नह जाई, नित नित रख उर तारो, तम संसार चरण लग तरिए।

राग माला। राग एक संग पंच बरंगन, संग अलाप है आठो नंदन। प्रथम राग भैरो वै करही, पंच रागनी संग उचरही। प्रथम भैरवी बिलावली, पुन्याकी गावै बंगली। पुन असलेखी की पई बारी, ए भैरो की पंचो नारी। पंचम हरख दिसाक सुनावै, बंगालम माध माधव गावै। ललत बिलावल गाव ही अपनी अपनी भांत। अष्टपुत्र भैरव के गाव है गायन पात्र। द्वितीया माल कौशक आलाप है, संग रागनी पंचो थाप है। गोंड करियर देव गंधारी, गंधारी सी हुती उचारी। तनासरी ए पंचो गाई, माल राग कौशक संग लाई। मारू मस्त अंग मेवारा, प्रबल चंड कौशक उबारा। खौखट औपौरा नद गाए, अष्टमाल कौशक संग लाए। पुन आयो हिंडोल, पंच नार संग अष्ट सुत। उठ है तान कलोल, गायन तार मिलावही। ते लंगी देव करी आई, बसंती संदूर सुहाई। सरस अहीरी लै पार जा, संग लाई पंचो आर जा। सुरमानंद पास कर आए, चंद्र बिंब मंगलन सुहाए। सरसबान ओ आहे बिनोदा, गावै सरस बसंत कमोदा। अष्टपुत्र मैं कहे सवारी, पुन आई दीपक की बारी। कछेली

जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहेगुरु जी। रामकली साध एक ओंकार, सतगुर प्रसाद जगदाता सोए, भगत वशल तिहो लोए जियो। गुर शब्द समावे अवर न जाने कोए जियो, अवरो न जाने शब्द गुर कै एक नाम त्यावहे। प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावहे, आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया। जग अमर अटल।

सूत के भगौती है म्यान चो जी गुरु सूत के सूत के भगौती है म्यान चो केस करी बेच खड़के ऐसा बोल दे ने बचन जबान चो बिजली सम्मान कर।

0: दशमेश सुन धन में जटा बीज लग पहुंचो नर में जटा खेदा दशमेश सुन धन में जटा बीज लग पहुंचो नर में जटा
1: सिक्की वाले बीज नू कुडाउना औखा है सिक्की वाले बीज नू कुडाउना औखा है खालसा सिक्की नू अपनाउना औखा है
2: कहंदे खालसा सिक्की नू

तेरा ने आन के फिर अर्ज गुजारी, हिम्मत राय ने आन के फिर अर्ज गुजारी, हिम्मत राय ने आन के फिर

0: हम तेराए रे आणी के फिर अर्जी गुजारी हां गुजारी।
1: लेट हो गया सतगुरु ना बात बिचारी, हाँ लेट हो

जगत भुलाया काल खड़ा रुआई। बाबा आव हो भाई हो गल मिल है मिल मिल दे आसीसा है। बाबा सचड़ा मैल ना चुकी प्रीतम किया दे आसीसा है। आसीसा देव हो भगत करेव हो मिलिया का क्या मिलो। एक भूले ना वो थे हो थाव हो गुर शब्दी सच खेलो। जा मार्ग नहीं जाना शब्द समाणा जुग जुग साचा है वैसे साजन सैन मिलो संजोगी गुर मिल खोले।

कहो नानक बिन हर भजन परत ताही जम फंद, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की लेह। कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुक देह, माया कारण धावही मूर्ख लोग अजान। कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान, जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम तेह जान। हर जन हर

जम फांदा सुख में बहुत संगी पए दुख में संग न कोय कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होय जन्म जन्म भरमत फिरियो मिट्यो न जम को त्रास कहो नानक हर भज मना निरपै पावै बास जतन बहुत मैं।

जेह सिमरत संकट मिटे दर्श तुहारो होए। मुदावनी महला पंजवा। थाल विच तिन वस्तु पयो, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो। जिसका सबस आधारो, जे को खावे जे को पुंचे, तिसका होए उधारो। एह वस्त जी न जाई, नित नित रख उर तारो। तम संसार चरण लग तरिय, सब नानक ब्रह्म पसा।

सब है पुत्र रहागन के अठारह दस बीस। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ। राम कली साद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जगदाता सोए भगत वशल तेहलोए जियो। गुर शब्द समावे अवर न जाने कोए जियो। अवरो न जाने शब्द गुर कै एक नाम त्यावे। प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावे। आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया। जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया। हर भाणा गुर पाया गुर जावै हर प्रपाश जियो। सतगुर करे हर पै बेनती मेरी भैज रखो अरदास जियो। भैज रखो हर जने केरी हर देहो नाम नरिंजनो। अंत चलद्या होए बेली जम दूत काल ने खंजनो। सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो। हर धार कृपा सतगुर मिलाया तन तन कही शबाश जियो। मेरे सिख सुनो पुत भाइयो मेरे हर भाणा आओ मैं पास जियो। हर भाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे शबाश जियो। भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ भाणा पावे। आनंद अनहद वजे वाजे हर आप गल मिलावे। तुसी पुत भाई परवार मेरा मन वेखो कर निरजास जियो। तुर लिखिया परवाणा फिरे नाही गुर जाए हर प्रपास जियो। सतगुर भाणे अपने बह परवार सदाया। मत मैं पिछे कोई रोव सी सौ मैं मूल ना पाया। मित पैजे मित बिगसै जिस मित की भैज पावे। तुसी विचार देखो पुत भाई हर सतगुरु पहनावे। सतगुरु परताख हुंदे बहराज आप टेकाया। सब सिख बंद

केसो गोपाल पंडित सदियो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बे बाण हर रंग गुर पावे। पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल हर सर पावे। हर पाया सतगुर बोलिया हर मिलिया पुरख सुजान जियो। रामदास सोडी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो। सतगुर

जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी जिन्हां दे पावन पवित्र चरणां दराब संगतां ने हाजरियां भरियां ने, सत्कारयोग बीबी विजय मनिहास जो परिवार नूं सदीव काल लई विछोड़ा दे गए हन, उन्हां दे अज शरीर दे अंतम संस्कार होए ने, उन्हां दी आत्मक शांति वास्ते परिवार वल्लों रखे श्री सहज पाठ जी दे भोग पाए गए, अमृत गुरबाणी दा कीर्तन होया, गुरु साहिब दे चरणां विच अरदास होई है, सच्चे पातशाह ने हुक्मनामा बख्शिश कीता है, कोई जानै कवन इहां जग मीत, जिस होए कृपाल सोई बिद बूझै ताकी निर्मल रीत, सतगुरु कृपा करन विछड़ी हुई रूह नूं अपने चरणां विच निवास बख्शन, पिछे परिवार नूं संबंधियां नूं पाणा मन दी दात नाम दी दात गुरसिक्खी जीवन चढ़दियां कला बख्शन। हुण कड़ा प्रसाद दी देग बार वरताई जा रही, तुसीं उत्थों लैणी है, गुरु का लंगर तैयार है, सारिया संगतां नूं परिवार वालों बेनती है, सब ने ही गुरु का लंगर छक के जाण दी कृपा करनी। आओ बड़े प्यार नाल कीर्तन सरवण करिए। भाई साहिब भाई गुरजीत सिंह जी बैंका हजूरी रागी सचखंड श्री दरबार साहिब तिन्हां दे जत्थे पासों जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

कबियो बाच बेनती चाओ पई, हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा।

घट घट के पट पट की जानै, जब उदकरख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कबहू, तुम मैं मिलत देह धर सबहू। जेते बदन श्रेष्ठ सब धारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निरिबकार निरलंभ, आदि अनिल अनाद असंभ।

मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार उह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनहु विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा

का पयो, जिसका सबस आधारो, जे को खावै जे को पुंचै तिसका हुए उधारो। एह वस्त तजी नह जाई, नित नित रख और तारो।